0: ജീപ്പിൽ അയാളോടൊപ്പം പലയിടത്തും യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ അയാൾ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അവളോട് പറയുന്നു. അവൾക്കും അയാളെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ അതവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല.
1: कहीं मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां पीताम्बर चौधरी स्कूल के हेडमास्टर हैं और उनकी तीसरी लड़की गीता, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हालांकि उसके लिए पिछले 3 साल से लड़का ढूंढा जा रहा है।
2: तुम्हें मालूम है मेरे लिए लड़का ढूंढा जा रहा है?
1: नहीं मालूम तो नहीं, लेकिन कुछ गलत कहा मैंने?
2: बिल्कुल गलत। आखिर शादी तो मुझे करनी है, किसी और को तो नहीं।
1: मतलब तुम शादी नहीं करोगी?
2: बिल्कुल नहीं।

0: छोटी सी इमली के लिए ऐसी लड़ पड़ती है कि मैं खाऊंगी।
1: मुझे तो वो काफी शांत चुपचाप सी लगी।
0: वो तो सर सिर्फ आपके सामने, क्योंकि आप भी शांत और चुपचाप रहते हैं ना। दो चार दिन जाने दीजिए सर, कहीं आपका चश्मा उतार कर भाग ना जाए। मेरी तो नकल उतारती है, कैसे मैं गाता हूँ।
1: जैसी भी है, मुझे तो वो अच्छी लगी।
0: मुझे भी।